का नाम है, समस्ती स्वरूप है। सतगुरु जी हूं कमाल कर दे, सारे रूप तेरे हैं। हे वाहिगुरु जी नमस्कार है तैनू, सारिया शकलां तेरिया, सब कुछ तेरे, जिथे भी कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ तू आप है। ते मेरे प्रीतम जी ये साडा भुलेखा है, असी इन्हां अखां नाल तैनू देख नहीं सकते, तेरा नाम दे कोई है नहीं, अनामे तू अनामे है। जिस तरह बाणी दे विच सतगुरु ने कहा है, तेरे नाम अनेका रूप अनंता कहे न जाने गुण केते। गुरबाणी नाल दे नाल जाप साहब दी बाणी दे नाल तुरदी है, ते रब जी दे महान गुणा नूं जाप साहब दी बाणी च भरपूर प्रचूर मात्रा विच भरिया है। समस्ती स्वरूपे सारिया शकलां तेरिया ने, हुण असी सारे पढ़ते हैं, जद आरती दे नाते शब्द पढ़ते हाँ, गगन में थाल राव चंद दीपक, उस बाणी दे अंदर की कहते हैं, सहस तव नैन नैन है तो ही को, सहस मूरत न एक तो ही, सारिया अखां तेरिया, सारिया शकलां तेरिया ने, सारे पैर तेरे, सारे हाथ तेरे, तेरे तो बिना तो कोई चीज है नहीं, तेरी वड़ियाई है। जिस दिन साड़ी सुरत विच रब जी दी गुणा दी वड़ियाई प्रचूर मात्रा विच भरपूर मात्रा विच वस जाएगी, असी डिप्रेशन तो बाहर आ जाएंगे। मैं ये समझना कि 80% लोग डिप्रेशन के मरीज, सारिया चिंतावां लेंदियां ने, लथ जांदियां ने, जद रब जी दे गुणा नू गा के असी रब जी दे गुणा दे वर्गे हो जाते, रब जी वर्गे नहीं हो सके, रब जी नू पाना है, रब जी दे गुण अपनाने पैणगे। जे रब जी निर्मल है ना तो सानू निर्मल बनना पेगा, रब जी मिठबोलड़ा है तो सानू मिठबोलड़ा बनना पेगा। मिठबोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, वो कदी कौड़ा बोलता ही नहीं, असी किस तरह कौड़ा बोलते हैं, किस तरह किसी तो असी परेशान हो जाने। बा कमाल, कभी पागल खाने जाओ ना तो उत्थे दो तीन गल्लां लिखियां होंदियां, असी कई बार किसी तो नाराज होंदे हां तो उत्थे पहला लिखिया होंदा, ए मानसिक रोगी ने, ये तुहानू भैड़ा बोल सकते ने, तो डाक्टर नूं भी मार देंदे, डॉक्टर में चपेट मार देते, माड़े बोल बोलते, इन्हों का बुरा नहीं मनाना। और ये ना दो बुरा बोलना नहीं, सानू यह समझना पड़ेगा, जिहड़ा रब जी तो दूर है, रब जी के गुणा नू नहीं जानता, जिहड़ा गुरबाणी तो दूर है, वो तुहानू क्रोध विच गल करेगा, क्योंकि उस ते सानू तरस खाना है। जिन्ने बाणी पढ़न वाले, जिन्ने बाणी नू जीण वाले, उना नू उस पागल खाने दे तरीके नाल जो संसार विच रब तू विछड़े हुए पागल तुर रहे ने, जींदियां लोथां तुरियां ने जिहड़े रब तू विछड़े। सतगुरु जी कह रहे ने, आखां जीवां विसरां मर जाओ, आत्मक मौत है, शरीर की मौत नहीं है, तेरा नाम नहीं है, तेरा रूप नहीं है, ते सारे समस्ती स्वरूप है, सारे स्वरूप रूप तेरे ने। प्रभंगी परमाथे समस्ती विभूते, हुण इस शय नूं इस गल नूं समझना पड़ेगा, जब इस गल नूं समझदे हां ते सानू गल पकड़ विच आएगी।

सुख कने कोई न जाने तुम्हारा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगिरी तुम्हारा सूतर तारी तुम ते हो ऐसो आगे अकार

सुनिहाल सत्रियाकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: हलके हलके वग रहे
1: सन पावर चला रे,
0: हलके हलके वग रहे
1: सन पावर चला रे,
0: मेघ सुखा

राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो हरलाहा आगे बसन सुहेला।

दोहे उधारु, सुखमनि सुखमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाउ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अनदिन जागै, प्रभ कै सिमरन भौ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै, प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निदान, नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा, प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी, प्रभ कै सिमरन हुए सुफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला, से सिमरै जिन्हें आप सिमराए, नानक ताकै लागो पाए, प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै, प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा, प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माही समाए, प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरह से तनवंते, प्रभ को सिमर

प्रभु को सिमरह। से सर्व के राजे प्रभु को सिमरह। से सुखवासी प्रभु को सिमरह। सदा अविनाशी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला। नानक जन की मंगैर वाला। प्रभु को सिमरह। से पर उपकारी प्रभु को सिमरह। तिन सद बलिहारी प्रभु को सिमरह। से मुख सुहावे प्रभु को सिमरह। तिन सुख बिहावे प्रभु को सिमरह। तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरह। तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरह। तिन अनंत कनेरे प्रभु को सिमरह। बसै हर नेरे संत कृपा ते अनदिन जाग। नानक सिमरन पूरे भाग। प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे। प्रभु कै सिमरन कबहु ना चूरे। प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी। प्रभु कै सिमरन सहज समानी। प्रभु कै सिमरन ने चले आसन। प्रभु कै सिमरन कमल भिगासन। प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार। सुख प्रभु सिमरन कांत न पार। सिमरह से जन जिनको प्रभु मया। नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए। हर सिमरन लग भेद उपाए। हर सिमरन भये सिद्ध जति दाते। हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते। हर सिमरन तारी सब तरना। सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन की सगल अकारा। हर सिमरन में आप निरंकारा। कर कृपा जिसे आप बुझाया। नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर्द दुख भंजना। कट कट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो। नानक के प्रभु साथ। अष्टपदी जय मात पिता सुतमीत न पाई। मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाप्यान दूत जम दलै। तह केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल होवै अति भारी। हर को नाम खिन माहे उधारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै। हर को नाम कूट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपहु मन मेरे। नानक पावो सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया। हर का नाम जपत हुए सुखिया। लाख करोरी बंधन परे। हर का नाम जपत निस्तर है। अनिक माया रंग तिख न बुझावे। हर का नाम जपत आघावे। जे मार्ग जात केला। तै हर नाम संगोत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याय। नानक गुरमुख परम गत पाई। छूटत नहीं कूट लख बाही। नाम जपत तै पार पराई। अनिक जगन जय आय सुधार। हर का नाम तत्काल उदार है। अनिक

का नाम संग उजियारा। जहा पंथ तेरा को न सुनू हर का नाम तैनाल पछानू। जय महाप्यान तप्त बोकाम तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम। जात्र का मन तुझ आकर्ख है तह नानक हर हर अमृत बरख है। भक्त जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट। हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध कमात। हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन किन्नु दान। मन तन रंग रत्ते रंग कै नानक जन कै ब्रत बबे कै पार जाते। हर को ना हर का नाम जन को मुक्त जुगत। हर कै नाम जन को तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का पर न पांग। हर का नाम जन की वडयाई हर कै नाम जन शोभा पाई।

हर तन जन कुआ प्रभ दीना, हर हर जन कह उठ सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, पोत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रसमाते, आठ पैर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बह करे, नानक जन संकेते तरे, पार जात्यो हर को नामु, काम तेन हर हर गुण गामु, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लता, नाम की महिमा संत रिद्वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम त्याई है, नाम तुल कछ अवर न हुए, नानक गुरमुख नाम पावै जन को, श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्व टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग बन मध्ये फिरया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान हो मैं बहु रतना, शरीर कटाय हो मैं कर राती, वर्त नेम करै बहु पाती, नहीं तो राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपी एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवै, मां उदास तपी सरती वै, गुण माय हुमत प्राण, कनिक सब है वर भूम दान, न्योली कर्म करै बहु आसन, जैन मार्ग संयमत साधन, निमक निमक कर शरीर कटावै, ताओ पी हो मैं मैल न जावै, हर के नाम संसर कछ नाही, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए, मन कामना तीर्थ दे छुट्टै, गर्भ गुमान मन ते उठै, सोच करै दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात, सुदेही को बहु साधना करै, मन ते कबू न भिख्या टरै, जल तो वै बहु दे अनीत, सुध का होए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उतरे पतत बहमूच, बहुत से आणप जमका पव व्यापै, निक जतन कर त्रिसना त्रापै, भेख अनेक अग्नि बुझै, कूट पाव दरगै नहीं सिजै, छूट सनाही उपयाल, मोह व्यापै माया जाल, अवर करतू सगली जमडानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै, हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोलै सह सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगै, साजना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सदगावै, जे को अपनी शोभा लूरै, सास संगे होमै छूरै, जे को जन्म मरण ते डरै, साजना की सरनी परै, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा, सगल पुरख मैं पुरख प्रधानु, सास संग जाका मिटै अभिमानु, आपस कौ जो जानै नीचा, सो गणिय सब ते उच्चा, जाका मनु सगल किरीना, हर हर नाम जिन कट कट चीना, मने अपने ते बुरा मिटाना, पेख है सगल सिर साजना, सुख दुख जन समदृष्टेता, नानक पाप नहीं लेपा, निर्धन को तन तेरो नाओ, निथावे को नाव तेरा थाओ, निमाने को प्रभ तेरो मान, सगल कटा को देवो दान, करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत मित जानो आपे, अपन संगा प्रभराते, तुमरी उष्ट तुम ते हुए, नानक अवर न जान सकोए, सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, सा संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्यम में उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी में हर सगल बानी में अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी, सगल थान ते उत्तम।

सुख वसै सुत प्रहाद मीत बंथा संघ हसै जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक कमुला जे प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करने तरस ना किसै त्यागवर संगरचना ऐसे दोख मुड़ंद व्याप्य नानक काढ़ देहु प्रव्यापे आद अंत ज्यों रखन हार तिस्यो प्रीत न करै गवार जा की सेवा नव नित पावै ता स्यों मूड़ा मन निहलावै जो ठाकुर ससदा हजूरे ताकु वंदा जानत दूरे जा की टैल पावै दर गै मां तिसै बिसारै मुग्ध जान सदा सदैव भुलन हार नानक रखन हार अपार रतन त्या कवडी संग रचै सा छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्त्र करमानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाय तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्द प्रीत भस्म संग होए अंत गुमै पतित विकराल नानक काढ़ लिहो प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बार भेख अंतर मलमाया छिप सुनाय किछ करै छुपाया बार ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ स्वान अंतर गुण बार तन स्वाह गल पात्र कैसे तरह था जाके अंतर बसै प्रव्याप नानक तेजन सह समात सुनंदा कैसे मार्ग पावै कर गैले होड़ निभावै का बुझारत बुझै डूरा निष्कही है तू समझै पूरा का विष्णु पद गावै गुंग चितन करै तो भी सुर भंग कै पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हाँ उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय सुहावै न चीत जो बहराई तास्यो प्रीत बलवा के गृह पीतर बसै अनद केल माया रंग रसै दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ द्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लो अपन कर करम तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी

बिन्ना वे पत जाय अष्टपदी। दस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण विखूट गवावे। एक भी न दे दस भी हिर ले तो मूड़ा कहु कहा करे। जिष्टा कुर्स्यो नाही चारा, ताकू की जय सद नमस्कारा। जाके मन लागा प्रमीठा, सर्व सुख ताहू मन बूठा। जिस जने अपना हुक्म नाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। गन सब अपनी देरास, खास पीत बरतैन दुलास। अपनी अमान कछ बहुर सावले, अज्ञानी मन रूस करे। अपनी प्रतीताप ही को वै, बहुर उसका विश्वास न हो वै। जिसकी वस्ति से आज्ञा रखे, प्रभु की आज्ञा मन माथा उसते चौगुन करे निहाल। नानक साहिब सदा दयाल, अनिक भांत माया के हित। सर पर होत जान नेत, बिर की छाया स्यों रंगलावे। उबिन से मन पुछतावे, जो दिसे सो चलन हार। लपट रहे होते अंध अंधार, उबटाऊ स्यों जो लावे नेहे। ताको हाथ न आवे के हे, मन हर के नाम की बिर सुखदाई। कर कृपा नानका पले लाई, मिथ्या तन तन कुटम सुबाया। मिथ्या हो मैं ममता माया, मिथ्या राजो वन धन माल। मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती सुभस्त्रा। मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या ध्रुव मोहिमान। मिथ्या पशु प्रकृत गुमान, स्त्री पग सात की सर। नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्व को हिर है। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को ताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है। मिथ्या तन पर उपकारा, मिथ्या बास लित विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पय सफल दे, नानक हर हर नाम ले। बिरथी सागत की आर जा, साच बिना कह होत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुखावता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय, मेघ बिना ज्यो खेती जाय। गोविंद भजन बिन बृथे सब काम, जो कृपन के निरार्थ दाम। धन धन ते जंजी कट बस्यो हर नाओ, नानक ता कह बल बल जाओ। रैत अवर कछ अवर कमावत, मनी प्रीत मुखो गंडलावत। जानन हार प्रभु प्रवीन, बाहर भेख न काहू पीन। और उपदेश आप न करै, आवत जावत जन्म मरै। जिस कै अंतर

प्रभु सह निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नान कुंजन चरण पुराता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया या पह माने या पह आप करत नबेरा किसे दूर जिनावत किसे बुझावत नेरा उपाव स्यान सगल ते रहत सब क जाने आत्म की रहत जिस पावत इसलिए लड़ लाए थान थनंतर या सुमाई सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जपना।

देव अष्टपदि जे प्रसाद छत्ती अमृत पाहे तिस ठाकुर को रख मनवाहे। जे प्रसाद सुगंध तन लाभ है तिसको सिमरत परम गत पाव है। जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे त्याग सदा मने अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नान सदा त्याई त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है तिसे त्याग कतवर लुभाव है। जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जे प्रसाद तू सब को मान मुक्ता को जस रसन बखान। जे प्रसाद तुरु रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगह मान पाव है नानक पद चेती घर जाव है। जे प्रसाद आरू कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही। जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरनी पार ठाकुर प्रभ ताके। जे प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सा सा सिमरो प्रभु उचे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद भूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय। जे प्रसाद असव हस्त सवारी मन तिस प्रभ को कबू ना बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलक तना राख प्रो प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठ सत्य सहत आई। तिस अत्याई जो एक अलख है यहाँ उहा नानक तेरी रख है। जे प्रसाद कर है पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को साथ साथ चितारी। जे प्रसाद सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह। जे प्रसाद सुने करना जे प्रसाद पिकै बिस्मा। जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख है जे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुख सह समाव है। सा प्रभ त्याग उर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पाव है साच रे मन मेरे तू ता स्योराच। जे प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ आप गाव आए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्व निदान प्रभ तेरी माया पू कछु न किन्हु लया। जित जित लाभ तित लगै हरनाथ नानक किन कह कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचर्ज कथाष्टपदी। साधक संग कुजल होत साध संग मल सगली कोत। साधक संग मिटै अभिमान साधक संग प्रगटै सुज्ञान। साधक संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा। साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक उपर जतन। साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्माय समानी। साधक संग गुच्छर मिलै साधक संग सदा प्रफुल्लै। साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग सब की रेन साधक संग मनोहर बैन। साधक संग न कतु तावे साध संग स्थित मन पावे। साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग माह पुनीत। साध संग किस्यो नहीं बैरु साधक संग न भीगा पैरु। साधक संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा। साधक संग नाही होताप साधक संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई। साधक संग न कबू तावै साधक संग सदा सुख पावै। साध संग बस्त गोचर लह साधु कै संग अजर सह। साधक संग बसै थान उचै साधु कै संग महल पहुँचै। साधक संग दड़ै सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म। साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान। साधक संग सब कुल उधार है साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है। साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुर देवा। साधक संग पाप ला साधु कै संग पाप लायन। साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्व थान गम। नानक साधक संग सफल जनम साधक संग नहीं कछ काल।
दर्शन भेट तो होत निहाल, साधक संग कलुख तहरै, साधक संग नरक पर हरै, साधक संग यहाँ वहाँ सुहेला, साध संग विचरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साधक संग न बिरता जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक कुदरै साध सुन रसै, साधक संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाउ, साधक संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साधक संग लगै ब्रह्म बिठा, साधु कै संग कट कट डीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी, साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साधक महिमा वेद न जाने, जिता सुने तिता बख्याने, साधक उपमा त्यो गुण ते दूर, साधक मारे भरपूर, साधक शोभा का नाही अंत, साधक शोभा सदा बेअंत, साधक शोभा उचते उची, साधक शोभा मूचते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोय, अवर न पेखै किस बिन कोय, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व को सोख, ब्रह्म ज्ञानी कै दृश्यमान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै धीरजेक, ज्यो बसदा को खोदै को चंद लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यो पावक का सह सुभाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगास, जैसे तारु पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी उच्चते उच्चा, मने अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पाई, नानक जिन प्रव्याप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल गिरी नाथ, अवनस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब परमाया, ब्रह्म ज्ञानी ते कच बुरा न भया, ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माहा, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभसंग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी करै प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस बट भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन बाही, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कतिया न जाया दाख्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उर तार है जो अंतरनाम, शर्म है पेख है भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है, नानक पर सगल निस्तार अष्टपदी, मिथ्या ना ही रसना परस, मन में प्रीत रंजन दर्श, पर त्रिपुना पेख नेत्र, साध की टैल संसंगेत, कर न सुने काहू की निंदा, सबते जान आपसको मंदा, गुरु प्रसाद विख्या पर हरै, मन की बासना मन ते टर, इंद्री जित पंच दोख ते रह, नानक कूट मध्य को ऐसा परस, वैष्णु सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हुआ नहीं कर्म, तिस वैष्णु का निर्मल धर्म, काउ बल की चाह नहीं बाछ, केवल भगत कीर्तन संग्राच, मंत्र नेत्र सिमरन गोपाल, सब ऊपर हुवत कृपाल, आप त्रिडावरै नाम जपावै, नानक को वैष्णु परम गति पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, सासन पापा मलख हुवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टैल करै नितनीत, मन तने अर्पै विष्ण प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है,
राम नाम मैं सोता है, राम नाम सारस पीवे, उस पंडित के बुदे जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो नया वे वेद प्रण सिमरत बुझे मूल, सुखम मैं जाने सूल चौ वरना को देव उपदेश नानुक, उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौ वरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिस की गत होए, सा सुन पावे जन को, ए कर कृपा अंतर उतारे, बस प्रेत मुक्त पात्र को उतारे, सर्व रूप का उखत नाम, कल्याण रू मंगल गुण गाव, काहु जुगत कित न पाई है धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सतराम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी पर सगल संगात उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, रब की आज्ञा तमित आवे, जीव नोक सो कहावे, तैसा अर्घ तैसा सुख, सदा अनंत नहीं व्योग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा मृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा विमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरता ऐसाई जुगत नानक को पुर कहिए, जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रखे तैसा तिन वापे करन करावन, जो प्रभाव है सोई फनोक, बसर आवंत रंग, लकी न जाहि पार ब्रह्म के रंग, जैसी मादे तैसा प्रगा, सो पार ब्रह्म करता बिना, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल, सलोक उस्तत करैन एक जानंत न पार अवार, नानक रचना प्रभ रचि भव जनक प्रकार, उस्तपदी कई कोट होए बुजारी, कई गोट आचार व्यवहारी, कई गोट पे तीर्थवासी, कई गोट बन प्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपिश्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कबका विचार है, कई कोट नवत नाम त्याव है, नानक करते कांत न पावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिगातम निकोर, कई कोट पर दर्ब को ही रह, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट पर देश पर माहे, जित चित लाव तित चित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पात्र वृक्ष निपजाए, कई कोट पवन पानी वैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट शशियर सून खेतर, कई कोट देव दान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सुतार है, नान जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत अर शास्त्र, कई कोट कीर्तन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरिवेश स्वर्ण थीवे, कई कोट जख किनर पिशाच, कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गाच, सबते नेरे सबूते दूर, नानक आप लिप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीव अहमर है, कई कोट बोजूनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाए, कई कोट काल तक पाए, कई कोट कीतनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, जय जय पाणा तह तैरा के, नानक सब किछ प्रभ कह हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संकिन लिवलागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिन को मिलो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होया सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट कहानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होए अवतार, कई जूत किन्नो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक कंकार, कई कोट गिने बपात, प्रभति हुए ब्रह्मा समाता, कंत न जाने कोय आपे आप, नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते, सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर पै सत सद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गावे, आत्म रस सुख सह समावे, अपने जन को साथ साथ सुमारी, नान कोई परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करन करन प्रभे कह, दूसर नाही कोई, नान किस बलिहार ने, जल थल मही अल सोय अष्ट पदी, करन करावन करन है जोग, जुत सुभावे सोई हो, किन में ताप तापन हार, अंत ने किच पारा वारा, हुक्मे तार तर रहावे, हुक्मे उपजय हुक्म समावे, हुक्मे उच नीच व्यवहार, हुक्मे निकरंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक समय रहा समाई, प्रभावे मान उपगत पावे, प्रभाव है ता पत्र तरावे, प्रभाव है बिन शास्त्री राखे, प्रभाव है ता हर गुण पाके, प्रभाव है ता पत्र तुधार है, आप करे अपन विचार है, दोहा सिरिया काप स्वामी, खेले भिक्षे अंतर जामी, जो पावे सुकार करावे, नानक दृष्टि अवर नया वे, कहो मानुक थे क्या हुआ वे,
ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਚਲੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ ਅਨਜਾਨ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚਿਆ ਜੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚੈ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦੈ ਜਿਸ ਧਾਵੈ ਨਿਮਕ ਮੈਂ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰਿਆ ਆਵੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਾ ਮਿਲੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਾ ਕਾ ਦਿਸ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਾ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ ਤਾ ਕਾ ਲਿਖਾ ਨ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਪਣੀ ਬਣਤਾ ਬਣਾਈ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ ਇਸਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਸਹਾਥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਪਰਾ ਜੀਓ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਪੰਥੀਓ ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗ ਹਸੈ ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਛਿੰਦ ਵਿਹਾਰ ਕਬੂ ਬਕਾਸ ਪਿਆਲ ਕਬੂ ਬੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕਾ ਮਿਲਾ ਬਨਹਾਰ ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਭਾਤ ਕਬਹੂ ਸੋਏ ਰਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਬਹੂ ਮਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬਡ ਰਾਜਾ ਕਬਹੂ ਭੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ਕਬਹੂ ਫਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਵਰਾ ਕਹਿਤੇ ਹੀ ਰਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹੈ ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ ਕਬਹੂ ਮੂਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਨਾਨ ਕਬਹੂ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਗਿਆਨ ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀ ਯਾਨਿਕ ਜੁਨ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ ਨਾਨਾ ਰੂਪੀਓ ਸੁਹਾਗੀ ਦਿਖਾਵੈ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਵਰਨਾ ਕੋਏ ਕਬੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਪਾਵੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੈ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ ਮੰਤਰ ਨਾ ਮ੍ਰਿਤਿ ਕਰੰਗ ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲਿਆਏ ਕਟਾਨਾ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋ ਸਮਾਨਾ ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਤ ਗੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਅਸਤਵਦੀ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮੰਤ ਕਹਾਵੈ ਜਿਨ ਮਰੈ ਬੋ ਜੁਣ ਪਰਮਾਵੈ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ ਨਾਨਕੀਆਂ ਮੁਕਤ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰ ਵਾਵੈ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਰ ਸੰਗ ਨ ਜਾਵੈ ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰਿਆ ਸੋ ਫਲ ਭੀਤਰ ਦਾਖਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸੁ ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ ਕਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ ਕਿਸੈ ਨਾ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਖਾ ਮਿਟੈ ਬਿਮਾਨ ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧਰ ਗੈ ਪਰਵਾਨ ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹੋ ਧਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਤਾਰੇ ਅਨਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰੂ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਾ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ ਹਰ ਦਰ ਗੈ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ ਸਰਬ ਕਿਰਿ ਜਾਖਾ ਮਨ ਹੋਏ ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗ ਨਿਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਬਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਕੋ ਛੁਟੈ ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲਗ ਕੋਟ ਧਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ਨਿਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ਨੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪ ਕਮਰੈ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾ ਜੈ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਬਡਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨ ਹਾਰ ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਜੈਸੀ ਦਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਜੋ ਕਿਛ ਕਿਨ ਸੁ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭੂ ਕੈ ਸੰਗ ਬੂ ਜੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਵਵੇਕ ਆਪੈ ਕਾਪੈ ਅਨੇਕ ਮਰਨ ਬਿਨ ਸਿਆ ਵੈ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਮਾਇ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ ਆਪੇ ਰਚੈ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ ਆਪ ਕਿਨੂੰ ਆਪਣ ਵਿਸਥਾਰ ਸਭ ਕਿਛੁ ਉਸਕਾ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਉਸਤੇ ਭਿਨ ਕਹੋ ਕਿਛੁ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤਨੰਤਰ ਇੱਕੈ ਸੋਏ ਆਪਣੇ ਚਲਤਾਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਕੌਤ ਕਰੈ ਰੰਗਾ ਪਾਰ ਮਨ ਮੈਂ ਅਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਿਖਿਆਨੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਭ ਕਿਨਾ ਕੂਟ ਮਦੇ ਕਿਨੈ ਬਿਰਲੈ ਚੀਨਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਘੜਕਾ ਸੁਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਵਖਿਆਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋਚਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬੌਰ ਬੌਰ ਅਵਤਾਰ ਅਸਪਦੀ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖ ਨਾਰ ਜਾ ਕਟੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖਨ ਜਮ ਤੇ ਨੀ ਛੁੱਟੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ
संत कह दुखन सो बाते हीन, संत कहते गुरखन कोई, संत कह दुखन थान प्रष्ट हो, संत कृपाल कृपा जी कर, नानक संसंग निंदक पीतर है। संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कह दुखन काग जो लवै, संतन कह दुखन सर्प जुन पाए, संत कह दुखन त्रिग जुन किरमाए, संतन कह दुखन तृष्णा मैं जलै, संत कह दुखन सब को चलै, संत कह दुखन ते सब जाए, संत कह दुखन नीच निचाए, संत दुखी का था को नाय, नान संत पावे तो पीगत पाए, संत का निंदक मात थाई, संत का निंदक टिकन पाई, संत का निंदक मा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखी आर दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत पावे तो उसका भी हुए मोख, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसै का निमित्त, संत के दुखी को डान लाग गए, संत के दुखी को सब त्याग गए, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्मै मरै, संत की दुख न सुख ते टरै, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नान संत पावे ता लय मिलाए, संत का दुखी अद बीज ते टूटै, संत का दुखी कितै काज न पहुँचै, संत के दुखी को ध्यान परमाइये, संत का दुखी उजड़ पाइये, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किच नाहि, अपन बीजा पे ही खाए, संत के दुखी कवरन राखन हार, नानक संत पावै ता लै उबार, संत का दुखी ओ बिल लाए, ज्यों जल बिहू मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पाव कींदन नहीं त्रापै, संत का दुखी चुटै केला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जुत पावै सुई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है, संत के दुखी की पुजै न आसा, संत का दुखी उठ चलै निराशा, संत का दुख न त्रिष्टै कोई, जैसा भाव है तैसा कोई होए, पया किरत न मिटै कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसक्यो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की सत करो दिन रात, सह ते आवो सास गिरा, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोतिया, अपना खिलाफ करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनु कृपा करे तिसा पर नाम दे बड़ भागी, नानक जन से श्लोक, तज हो से आनप सुरजन हो, सिमरो हर हर राए, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पहु जाए, पदी मानु की टेक वृथि सब जान, देवन को एक भगवान, जिसके दिए रह अघाए, बौर तृष्णा लग गए आए, मारे रखे को आप, मानु कह कुछ ना ही हाथ, जिसका कुंभू सुख होए, जिसका नाम रखंठ पुरोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक विघन लागे कोई, उस्त मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसनामृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, सा संग बिन से सब संग, चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानकू जल मत्था, बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करह विचार, उसे धनवंत गणी संसार, मन तन मुख भूलै हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, तुत कियो सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक दिना निरंजन जानिया, गुरु प्रसाद अपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, सार संग हर हर जस कैत, सर्व रोग ते हर जन रहत, वंदन कीर्तन केवल बख्यान, गृष्ट में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जम की पासा, पार वरम की जिस मन भूख, नानक से न लागे दुख, जिसको हर प्रभ मंच ते आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे, जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवको किस ते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोधत सोधत सोधत सीजिया, गुरु प्रसाद तत् सब बुझिया, जब देखो तब सब किस मूल, नानक सो सुखम सोई असूल, न कि जन्मे न किच मरे, अपन चलता भी करे, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सकल मैं आप, अनेक जूत रचता पुथाप बनासी, नाही किछ कांड, धारण तारे हो ब्रह्मांड, अलख भे पुरख प्रताप, आप जपाए त नानक जाप, जिन प्रभ जाता सु शोभावंत, सकल संसार दुरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सकल उदाहरण,
प्रभु के सेवक दुख विसारन आपे में ले कृपाल गुरु का सब जप निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बड़ भागै नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुर को उत्तम करमान जो किच करे सुप्रभ कह रंग सदा सदा वसै हर सांग सह सुभाय होवै सो होए करन हर पछाण है सोए प्रभु का किया जन बीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस उपजी तिस्मा समाय सुख निधान बने आए आप उसको आप दिन मान नानक प्रभु जन एको जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जन नहार जा कै सिमरन उतरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदे टूटी गंढ नहार गोपाल सर्व जी आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते बिरथा कोई ना हेरे मन मेरे सदा हर जाप अवनासी प्रभ आपे आप अपन किया कछु न होए जिस प्राणी लोचै कोए तिस बिना ही तेरा किस काम गत नानक जपे कर नाम रूपवंत हुए नाही मोह है प्रभ की जो सगल कट सो है तनवंता हुए क्या को गर्भ है जा सब किस किसका दिया दर्भ है अत सूरा जे को कहा वह प्रभ की कला बिना कहता है जे को हुए बह दातार तिस देन हार जाने गावार जिस गुर प्रसाद टूटै हो रोग नानक सोजन सदा रोग जो मंदिर को थम है थमन त्यो गुर का शब्द मन स्थमन जो पाखा नाव चढ़ तरह प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है जो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन देख मन हुए विगास जो माँ ध्यान में मार्ग पावे जो साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बांचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर काहे बिललाइये पूर्व लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख प्रभ देवनहार अवर त्याग तू तिसै चितार जो कछ करे सोई सुगमान भूला काहे फिरे अजान कौन बसताई तेरा संग लट रहे रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पद छेती कर जाहे जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज मान लेहो मन भूल राम नाम हृदय में तो लाद के संतै संचाल अवर त्याग बिख्या जंजाल धन धन कै सब कोए मुख उजल हर दर कै सोए हो वापार विरला वापार है नानक ताकै सुध बलिहार है चरण साध के तुय तुय पीओ अर्प साध को अपना जियो साध की धूर करो स्नान साध ऊपर जाइये कुर्बान साध सेवा विट भागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाई है अनिक विघन ते साधु राखे हर गुण गाय अमृत पश्चाख उठ गई संतै दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवा लनहार भूखे को देवत आधार सर्व निधान जाके दृष्टि माए पूर्व लिखे का लहना पाहे सब किस किसका उकरण है जो किस बिन दूसर हुआ न हो जप जन सदा सदा दिन रहनी सब त्यूच निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल थी आ जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रचीत भगत पग सुनिए त्यो लोए जा कह हृदय को हुए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सतमुख कहत सच हृदय सच्चा आकार सच वर्त सच्चा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग किच त्रिगुण ते प्रभिन्न तिसै बुझाए नानका जिसो वै सो प्रसन्न अस्त वधी अविनाशी ब्रह्मन वैराग मानु की तु प्री त्याग किसते पर नाही किच कोय सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन हो नराव मन सपून सरन जोग जो कर पाया सोई होग हरण भरन जाका नेत्र फूर तिसका मंत्र न जानै होर अनदरू मंगल सा जाकै सर्व तोक सुनिए करता कै राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपेस्तर ग्रस्त मैं भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस पुरु का किनंत ना पाया जाकी लीला कीमत नाहे सगल देव हारे वगाहे पिता के जन्म के जाने भूत सगल पुरोय अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जन दास नाम त्या वैसे त्यो गुण मैं जाको परमाए जन्म रह फिर आवै जाए उच नीच जिसके स्थान जैसा जनावै तैसा नानक जा नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे करंग नाना बिरकिनो बस्तार पर्व बनासी एकंकार नाना चल करे किनवाए पूरे पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार
नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम कसंग उदरे सुन श्रवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जा का सत स्थान पुरुष सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरुष माहि समाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बजाय तिसे सफली सत नाम प्रभु का सुखदायी विश्वास सत नान गुरु ते पाई सत वचन साधु उपदेश सत ती जन जा कर दे प्रवेश सत निरत बुझे जे कोई नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सतु आपे जाने अपनी मित गत जिसके सिर सो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते कि मित न जाने की या नानक ज्योति भाव है सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भय बिस्मा जिन बुझे जसाया स्वाद प्रभ कै रंग राज जन रहे गुरु के वचन पदार्थ लहे ओदाते दुकाटन हार जाके संग तरह संसार जन का सेवक सो वडभागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक हुसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत विखनहार नाम सत सत्यावनहार आप सत सत सबधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या करन करावन तिन भूल पछान्या जा कर दे विश्वास प्रभ आया सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निर्भउ होए बसाना जिस ते उपजया तिस माहि समान बस्त माहिले बस्त गडाई ताको भिन्न कह न जाई बुझ है बुझनहार विवेक नारायण विले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रपालनहारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रवतार है नानक सो सेवक साथ साथ सुमार है अपने जन का पर्दा ढक है अपने सेवक की सर पर रख है अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक किया पतरा कहता कि गत में तो कोई न लख है प्रभ के सेवक को न पहुंचे प्रभ के सेवक उस ते उचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दा दिस प्रगटाया नीकी कीरी महकल रख है पसम कर लश्कर कूट लख है जिसका सास न काटता पोता को रख देकर हाथ मानस जतन करत बहुत इसके कर्तव्य जात मारण रख है वर्ण कोई सर्व जिया का रखा सोए काहे सोच कर रे प्राणी जप नानक प्रबलख विडानी बारंग बार बार प्रभ जपी है पी अमृत मन तंत्र पी है नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिसके चवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ताने मंत्र नाम मैं नाम सुमाने उठत बैठत सोवत नाम का नानक जन कै सदकाम बोलो जस जीवा दिन रात प्रभ अपने जन की नीदात करै भगता तुम कह चाहे प्रभ अपने सो रह सुमाए जो हुआ हो सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पहचाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह क न जानो आठ पहर प्रभ सह हजूरे कौ नानक से जन पूरे मन मेरे तिनकी उठ ले हे मंतने अपना तिन जन दे जिन जने अपना प्रभु पिछाता सोचन सर्वथो का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सपा मिटावे वरसियान सगली छाड़ ति जन की तू सेवा लाग आवन जान हुई तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक सत पुरख जिन जाने सतगुर तिस का नाओ तिस कै संग सुखुदरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै
सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै। सतगुर सिख का नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी हे। सतगुर सिख का हलत पलत सुवारै, सतगुर सिख का हलत पलत सुवारै। नानक सतगुर सिख को जी नाल संभारै, गुर कै गृह सेवक जो रहै। गुर की आज्ञा मन में सहै, आपस कौ कर कछ न जनावै। हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन बेचै सतगुर के पास। तिस सेव के कार्य रास, सेवा करत होए ने कामी। तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जसाप करे। नानक सो सेव गुर की मतले, बीस बिस्वे गुर का मन मानै। सो सेवक परमेश्वर की गत जानै, सो सतगुर जिस हृदय हर नाउ। अनेक बार गुर को बल जाओ, सर्व निदान जी का दाता। आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म। एक है आप नहीं कछ परम, सह सियानप लया न जाइए। नानक ऐसा गुरु बड़भागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे। सुन कर बचन करण आघाने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेख्या हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावै तिसलै मिलाए। जे बाय कुस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण बवे। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम गोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकी कीमत किने न पाई। अनिक भगत बंधन नित कर है, चरण कमल हृदय सिमर है। सद बलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभु जपने।

नानक भगती नाम समाय। सो क्यों बिसरै जे काल न भानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै, सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जे अगन में राखै, गुरु प्रसाद को बिरला लाखै, सो क्यों बिसरै जे विखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा काढ़ै, गुरपूरै तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करहु एहु काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावहु, आप जपहु अवरह नाम जपावहु, भगत पाए तरियै संसारु, बिन भगती तन होसी चारु, सर्व कल्याण सुख निदनाम, बूटत जात पाए विश्राम, सगल दुख काहू वतनासु, नानक नाम जपो गुणतासु, उपजी प्रीत प्रेम रस चाऊ, मंतन अंतर एही सुआऊ, नेत्रोपेक दर सुख होए, मन बिकसै साध चरण तोए, भगत जना कै मंतन रंग, बिरला को पावै संग, एक बस्त दी जय कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही ना जाए, नानक रहया सर्व समाय, प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वच्छल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल, आद गुरु कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो हुए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत, हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए, अनिक राज भोग वडियाई, हर के नाम की कथा मन पहाई, वो भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत, भली सो करनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत, साध संग प्रभु देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास, सलोक

जब धारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरख सोग कहो किसे व्यापत। जब अपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहा किस होवत परम। अपन खेला वर्तीजा, नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल धनी, तब बंद मुक्त कहो किस को गनी। जब एक हर अगम अपार, तब नरक सुर का कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ से सुभाए, तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप अपनी जोत धरे, तब कवन निडार कवन कत डरे। अपन चलता करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख अपने आसन, तह जन मरण कहो कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अभिगत गुचर प्रवेका, तब चित्र गुप्त किच पूछत लेका। जब नाथ निरंजन गोचर गादे, तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे। अपना पापी चर जा, नानक अपन रूपा पिय पर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तय छल छिद्र लगत कौकीश। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावे, तय किसह भूख कवन तृप्तावे। करन करावन करने हार, नानक करते का नाही सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कलाया पै परवीन, तै वेद कतेव का कुचीन। जब अपने आप आपुर तारे, तो सगन अपसगन कहा विचारे। जय अपन ऊच अपन आप नेरा, तै कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जन आप। जय अचल अछेद भेद समाया, ऊहा किसह व्यापत माया। आपस को आप है आदेश, त्यो गुण का नाही प्रवेश। जय एक एक भगवंता, तै कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय अपना पाप त्यारा, तह कौन कथै कौन सुन नहारा। बहु बेअंत उच दे उचा, नानक आपस को आप पहुँचा। जय आप्रच्यो परपंचकार, त्यो गुण में किन्नु विस्तार। पाप पुन तै पही कहावत, को नरक को सुर्ग बंचावत। आल जाल माया जंजाल, ओ मैं मो परम पै पार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार कियो बख्यान। आपन के लाभ कर दिखे, खेल संकुचे तो नानक के। जय अभिगत भगत आप, जय पसरे पासार संत प्रताप। दुहु पाका आपे तनी, उनकी शोभा उन्हु बनी। आप है कौतुक करे अनद चोज, आपै रस भोगन निरजोग। जिस भावै तिस आपन नाई लावै, जिस भावै तिस खेल खिलावै। पेश मार था गंते अतुलै,

क्षेत्र में एक वाणी प्रभु की सबको बोले आप अड़ो न कब हूं डोले सर्व कला करके ले खेल

साहो अमोल गौण अमोल व्यापार अमोल व्यापार ये अमोल भंडार अमोल आवह अमोल ल जाह अमोल पाए अमुला समाह अमोल धर्म अमोल दीवान अमोल तौल अमोल परवान अमोल बखशीस अमोल निशान अमोल कर्म अमोल फुरमान अमोलो अमोल आख्या न जाए आख आख रहे लबलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े कर है बखयान आख है भरम आख है इंद आख है गोपी तह गोविंद आख है ईश्वर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सौर नार मौन जान सेव केते आख है आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करे है ता आख ना सका है केई के जे वड भावै ते वड होए नानक जाना साचा सोए जे को आखा बोल बिगाड़ ता लिखिया सर गावारा गावार सो दर केहा सो कर केहा जत बह सर्व संभाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे केते राग परिचो कहियन केते गावण हारे गाव है तोहनो पौन पानी बह संतर गाव है राजा धर्म द्वारे गाव है चैत गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गाव है ईश्वर वर्मा देवी सोहन सदा सवारे गाव है इंद इंदासन बैठे देवत्या दल नाले गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जते सते संतोखी गाव है वीर करारे गावन पंडित पढ़ नरखीसर जोग जोग वेदा नाले गाव है मोहनिया मन मोहन स्वर्गा मच पयाले गावन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीर्थ नाले गाव है जोत महाबल सूरा गाव है खानी चारे गाव है खंड मंडल वर भंडा कर रखे तारे सही तुद नो गाव है जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर कहते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जैन रचाई रंगी रंगी भासी कर जैन सी माया जैन उपाई कर वेखा कीता आपना जैब तहदी वड्याई जो तस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पात साह साहा पात साहेब नानक रहण रजाई मुंदा संतोख सारम पात झोली ध्यान की कर है विभूत खिंसा का कुआरी काया जुगत डंडा परतीत आई पांथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जोग जोग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वज है नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साद संजोग बिजोग दोए कार चलावह लिखे आवह भाग आदेश तिसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जोग जोग एको वेस एका माई जोगत व्याई तेन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण जैब तिस भावै तिवै चलावै जैब होवै फुरमान ओ वेखा ओ ना नदर न आवै बहुता एहो विडाण आदेश तिसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत
जोग जोग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जो किस पाया सो एका वार कर कर वेखा।

अनाद अनाहत जोग जोग एको वेश एक दूजी बा लख हो है लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एत राह पत पवड़िया चढ़िया होए कीस सुन गल्ला आकाश की।

माता तरस महत दिवस रात दोए दाई दाया खेला सगल जागत चंगे आईया बुरे आईया वाचा।

मानवन मानत महामूढ़ काज भेद न जानत महादेव को कह सदा सैब निरंकार का चीनत न पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पहन पहन तो देती तुमरा लखा न जाए पसारा कहे बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पहो राम कहे कूपा अंड जे रजसे तज कीनी उस भुज खान बहुर रज दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट पहो शंकर अगैठा जगरे श्रेष्ठ दिखाए अजम्भव आज वह स्वरूप से अम्भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवा तुद पाता सकल मलेज करो रण काता जे आज तुझ तब सर नी परे तनके दुष्ट दुख तुम मरे पुरख जवन भग परे ते हारे तनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार से आह तागे काल निकट न आह रचा होए सहे सब काला दुष्ट रहट टर तत्काल कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रद्द सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई एक बार जै तुम्हें संभारा काल फाते सहे उबारा जन नर नाम से हारो कहा दारद दुष्ट दोगते रहा खड़ग केत मैं सरन तिहारी आप हास दल हो उबारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दोगते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सब राता केलवक सगल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छह करता सरिया सोजा पाए दयाला पूर्ण करा ग्रंथ अर काला मान बाज तफाल पावे सोई दुख न तिस ब्यापत कोई अड़ल सुने गंग जो याह सुरस न पावे सुने मूढ़ चत लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाव निकट न चंदर के रहा हो जो या की एक बार चौपाई को कहा चौपाई संबद सत्र है सहस प्रजय अर्ध सहस पंथीन कहिजय भाद्रव सुधि अस्मीर वारा तीर्थ सुद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गह जब ते तुमरे तब ते को आंग तरे नहीं आने हो राम रहीम पुराण पुराण अनेक कह मत एक न मान्यो समृद सातर भेद सब भौ भेद कह हम एक न जान्यो सरी असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो है बखान्यो दोहरा सगल दुआ

तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखहु राखनहार दयाला, नानक।

हर धन संची है भाई, जे हलत पलत हर हुए सखाई रहाओ। सत संगति संग हर धन खट्टा।

0: चार श्लोका नाल श्लोक भी महल्ले पहले के लिखे टुंडे अस राजा की धुनी श्लोक महला पहला।
1: बलहारी गुरु अपने दियो हाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते की एक कत न लागी वार। महला दूजा जे सौ तिंदा उगवै सूरज चढ़े हजार एते चानण हुंदियां गुरबिन घोर अंधार। महला पहला
0: नानक गुरु न चेतनी।

0: लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद साला विस्माद ऊर्ज विस्माद रा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहा विस्माद नानक बुझण पूरे पाग
1: महला पहला कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुख सार।

0: ओए दियाखे सो तू है जाने तेरा पे तेरी सार नानक भगतां पुखसला सनाम आधार सदानंद रहे दिन राती गुणवंतियां पछार महला पहला
1: मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई कुम्हार घड़ पांडे इटां की

नानक मेर शरीर का एक रथ वाहो। जुग जुग फेर बटाइए ज्ञानी बुझे ताहे, सत जुग रथ संतोख का धर्म अग्य रथ वाहो। त्रितय रथ जतय का जोर अग्य।

सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे, हाँ फिरों खो जंतिया तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे, एक पोरी दर्शन दीजे नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे, एक तिल पीना तीरीजे प्रभ स्यो मन लीना ज्यों जल मीना,

सत्संग जी, बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वास भगवती पास दस प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय मेरे अंकित कुरते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर्ण उन्होंने आवाता है सब थाई हुए सहाय दसम पाचा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसम पाची के पितरात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पाठ दरदा त्यं तरके गल सत बोलो जी वाहेगुरु। बनवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चारे मुक्ते हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपिया बन सकिया दे जलाई दे वाही देख नित किया तेना प्यारे सुचारे ने कमाई दा ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। जिन्हां सिंघा सिंघणियां धर्म ये सी दिते बंध बंध कटवाए कोपरियां लवाइया चरखड़ियां चले आर नजर आए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म ने आ रहा से किसी देखे सत्संग निभाए ते नाली कमाई दा ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। पंजाब ट्रांसफर गुरुद्वारा का ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। नाम किताब है चित आवण का सदका सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसा साहब धन चरियात देख देख की फतेह बिंद की पहच पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान उत्साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब के दर्शन स्नान चौंकिया चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखा का मन नीवा मत उची मत पत के राखे आप वाहेगुरु। गुरु गरीब महाराज पंथ सदा शाही दार जी गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जी का तो आप दे पंथ में छोड़िया गया है उन्होंने गुरु दर्शन दार से सेवा समाज दिता है अपने खालसा जी बख्शो ये ओटिया दी ओट गुरु ने आसरिया दे आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ दार दोए कर जोड़ करो अरदास तुद भावे ताने रास। ये गरीब महाराज जी आप दे चरण का उन्होंने अरदास नहीं दिता जी आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाश मान हो संगत दर्शन दस दे के हल दार जी हो बेहत बाणिया के पाठ ऐस में रागी सिंह ने आपके चरण जासा की वार कीर्तन कितने विद्वान वीर ने अज हुक्मनामे की कथा तैयार की भाई कृपा करो हो भुला चुका माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सच खंड प्रधान गुरबाणी का भाव सारिया संगत हिमतान की वार्ता करो जी अगो तो शोध से पुत्र बाणी टाट मन बुद्धि बख्शिश करो विवाद इस खुशी में आप दी मक्खियां दाता पत्र कलाप सारी जगह तैयार करे हाज दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद शाह संघ जी रसना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी जीवन राज कृपा करो आप दिया मक्खियां दातों जो लग रहा है चुट सवारियां प्रवान करनी आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टैली संघा सिंगड़ियां तंदुरुस्ती बख्शो चाटिकर बख्शो और सदा ही इसे तरह अपने चरणा सेवा की भावना बख्शी पालता करो जीवन राज कृपा करो जी दतार दूर दुराले कार्य बैठिया लाइव कथा की श्रवण कर रही हैं सारी संगतान की हाजिरी प्रवान करो घड़िया लेखे रहो दतार अपने बख्शे गिरी संगत बख्शे संगत आपके चरणा धनवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया ऑनलाइन गुरु कर गुरु घर सेवा सिंह कर सकता माया भेटा कर रही चरना प्रवान करो पंचकर साहब दमाइया सबल करो कार्ज वध मददार सब संघ दिन शुभकामना समा पूरिया करो जी तार मेरा लग रहा हो सेवा प्रवान करो भुला चुका की माफी बख्शो पितर नामी बख्श करके ब्रह्म लड़ी वास्ते अच पाठ करने वास्ते आग्ञा बख्शो रहते कार्ज पा के चरना समाधि बनाओ शुद्ध से पित्र सेवा लिया की वादा कर देता सही प्यारे मेरे जिन्हें मेरा अपना नाम देता नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाहेगुरु जी का खालसा।

शब्द भेद फुन साचे, अहनिस नाम रखते से सूचे, मन मर जन्मे से काचे, अवर न दिसै किस सालाही, किस है सरीक न कोई।

नात स्वरूप वर्ण नहीं रेखिया, साचे शब्द निशान रहाओ। नात समात पिता सुत बंधप, नात

तो तुम्हारी कटकट अंतर ब्रह्म लुकाया कटकट जोत सुबाई बज्र कपाट मुक्ते गुरमति निर्भय ताड़ी लाई जंत उपाय काल सिरजनता वसगत जुगत सुबाई सतगुर सेव पदार्थ पावह छूटह शब्द कमाई।

जो गुरमुख सेवक लागा मन रे समझ कवन मत लागा नाम विसार अन रस लोभाने फिर पछताहे अभागा रहा आवत को हरख जात को रूब है यो दुख सुख नाले लागा आपे दुख सुख भोग भोगवै गुरमुख।

गुरमुख एक दृष्ट कर देखो, घट घट जोत समोई जियो। चल तो ठाक रखो घर अपने, गुर मिले एह मत होई जियो। देख अदृष्ट रहो बिस्मादी, दुख बिसरे सुख होई जियो। पीवो अप्यो परम सुख पाइये, निज घर वासा होई जियो। जन्म मरण भव भंजन गाइये, पुनरप जन्म ना।

गिरही महै सदा हर जन उदासी, ज्ञान तत् विचारी। सतगुर सेव सदा सुख पाया, हर राख्या उरतारी। एहो मनुआ दह दिस धावदा, दूजै पाए खुआया। मन मुख मुग

मनमुख मुग्ध गुबारा, आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई, आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई, किस पिन अवर न कोई, जो तुर लिखिया सो कोए न मिटै भाई, करता करे सो होई, नानक नाम वसिया मन अंतर भाई, अवर न दूजा कोई, सोरठ महला तीजा, गुरमुख भगत कर

हर रस साधनाया, संध्या तर्पण करह गायत्री बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वडभागी, जिसनु आप मिलाए हर रस पीजन।

झूठै भरम भुलाना रहा। त्रै गुण माया भरम भुलाया, औमै बंधन कमाए। जमण मरण सिर ऊपर उभौ, गर्भ जोन दुख पाए। त्रै गुण वरतै सगल संसारा, औमै विच पत खोई।

तही प्रकाश हमारा पहो, पटना शहर बिखै पौलयो। तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिब कमाल, जिन्हों का प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हैं। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी का आना पटना की धरती ते साहिब जी का प्रकाश होया ते कहिंदे ने पीर भीखण साह जिहड़ा अंबाले के नजदीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दे संगी साथी हैरान हन, अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि ए लहदे पासे नूं सिजदा करदे हन, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछया, पीर जी की गल, ठीक हो? अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो। कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां, इस दुनिया का मालक, वो अज पटने की धरती ते उसने आना किया है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनू पता है, जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नू मिलना है। बंदगी तां आपां सारे करदे हां, पर बंदगी इहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़ा है ना ही दूर। जदों इहो जी बख्शिश हो जाए, पीर भीखण साहिब कहिंदे ने 3 महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोकी यात्रा करया करदे सन, तुर पए, तुरे जा रहे हन उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउण दे। जदों उत्थे पहुंचे, दर्शना दी इजाजत मंगी ते नाल कहिंदे ने 2 कुजियां विच परखण लई भी कलगीधर पिता जी वल हथ वधाए ते दोवें कुजियां ते साहिब जी ने हथ रखना कीता। कहे मैं सारे ए अवल अल्लह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे, ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु। कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असीं सारे संसार दे भले लई दोस्त दोखियन पकर पछाड़ो, हमरे सब बैरियन संघारो। जिहड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने दुष्ट दोखियां दा खात्मा कीता ते बाए गही की लाज अस गोबिंद दास तुहार, साड़ी रखिया, साड़ी लाज रखी, हिंदुस्तान की लाज रखी, भावे अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता। दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनीमन गारे, दीन आख दिन जिदा कोई आसरा ना हो, साहिब नितानिया का तान आए ना जाई थिर सदा, गुरसबदी सच जान। कलगीधर पिता जी ने साडे लई, साडे तरम दे लई
ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।